दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया बेनती कीती गरीब निवाज आपने जो ए बाणी रची है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आपने बाणी रची है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे फिर भी उसके हुक्म विच रवे ऐसा कौन है कृपा करो सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है ता गुरु अर्जन दे पातशाह कहन लगे साई मियां मीर समा आवेगा ए जो अखर असी लिखे हन जो अखर उचारे हन इना ते अमल भी करके दसांगे ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां साहब जी ने क्या अच्छा जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है ता चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी ए तुसी चंगा नहीं कीता गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब नवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती गरीब नवाज किथे तुरे हो आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं किसे जरूरी काम नूं चले हैं तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हन साहिब जी तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा बाबा जी ए राज राज ही रहन देना खोलना नहीं गरीब निवाज चले हो एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ।

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां। चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तां गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा।

अग बल रही है तले ऊपर तवा लाल होया पे आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे कि अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नु नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री ते फिर ऐसी अडोल बैठे। एक दिन बीत गया दो दिन बीत गए ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ रेत तपाई पड़पूंजे नू सदिया जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। सात संगत बोलो श्री तलो तत्ती तवी अग बल रही है उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं ते साहब जी दे जदों भी बुल फरक दे हैं ना विच्चों एही आवाज आउंदी है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां वीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। हाथ जोड़ के बेनती की गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है तन तप रहा है मन शांत है हरि नाम से अंदर परमेश्वर दा नाम वसया अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरमंदर साहब दी नी रखी सी जात दा मुसलमान सी लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नीव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती की गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनू हुक्म करो मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है जरना वड्डी गल है शक्ति होंदियां होयां जर लैणा ए वड्डी गल है। तां उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या हजरत मियां मीर उपर तक जां उपर देखिया तां 33 करोड़ देवी देवता हाथ बन्ने खड़ोते हैं गरीब निवाज सानू हुक्म करो लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं ते की

तू मेरे संग सदा है ना। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे।

मेरे ते ऐसी कृपा करो कि मैनू तेरा नाम ना विसरे। ये बेनती कौन कर रहा है, ये अरदास कौन कर रहा है? गुरु नानक नू जिस किसे ने भी जिथे किथे पुकारिया, गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया। अज संसार नू तारदे हुए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दिपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे। शामा दा समा है, ते साहब जी ने मर्दाने नू आख्या, भई जा मर्दानिया और दुकानदार कोल पूछ भई कि असी मुसाफिर हां, प्रौणी हां, संसार ते आए और इत्थे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हैं, भाई एक रात बितानी है। जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे ता असी तेरी दुकान दे बार आराम कर लवांगे। दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलाधार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मंग रहे। सत सगत बोलो श्री ते जदों मर्दाना दुकानदार को लगया, भाई आ तू हट्टी बंद कर लो मैं तो असी रात इत्थे ठहर जाइए। वो कहिंदा भाई मैं आप नू जानदा कोई नहीं, मेरी तुहाडे नाल कोई जान पहचान नहीं, ते तुसी इत्थे ना ठहरो, किथे होर चले जाओ। संसार ते ऐसे भी सन जिन्हां ने गुरु नानक दा दर्शन पा के भी उहदे चरणां दी छोह ना लै सके। भाग होवन तां चरणा दी शो प्राप्त होवे। कह दिता महाराज असी तुहानू नहीं जानदे, कृपा करो अगे चले जाओ, रात ठहरन वास्ते किथे होर थां ढूंढ लो। दीन दुनिया दा मालक जगत गुरु धन गुरु नानक सच्चा पातशाह कहन लगा, चल मर्दानिया भाई जे इत्थे नहीं ठहरन दी थां तां किते होर चली, चल इस पिंड विचों बाहर चली, शामां दा समा है। मर्दाने ने अखां उते हथ रख के वेख्या, आख्या बाबा ओ दूर एक झुग्गी जिदे विच रोशनी है, लेकिन है इथों दूर, पिंड तो बाहर दिखती है। हजूर कहन लगे चल मर्दानिया फिर आज रात उथे ही बिताइए, चल के रात उथे ही कीर्तन करिए, उथे ही परमेश्वर दे गुण गाई, आज रात सफली करिए। साहब जी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बाले मर्दाने नू नाल लीता और जदों उस झुग्गी दे बाहर आके खड़ोते, साहब जी ने आख्या मर्दानिया जा भाई अंदर वेख इस झुग्गी दा मालक कौन है, ते उहदे कोलों पुछ भाई अज रात असी इत्थे बिता लईए, सवेरे चले जावांगे। ते जदों मर्दाना झुग्गी दे अंदर गया ते झट बाहर आया, मूंह ते पल्ला मर्दाने दे, गरीब निवाज अंदर तो बड़ी बदबू है, क्यों मर्दानिया? पातशाह अंदर एक कोड़ी पिया हुआ है जिसे हाथ पैर कोड़ दे नाल गल चुके हैं,
ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਬੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਉਸ ਕੌੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ, ਉਸ ਕੌੜੀ ਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕੌੜੀ ਵੱਲ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਕੌੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ

जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालिया ने भी कट छड़िया दुरकार के कट छड़िया क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सा मेरे पास बहुत पैसा सी मां प्या दा साया सिर तो उठ गया ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहन वाले सन ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया ते ओ जेड़ा तन सी उदे नाल मैं पाप कीते ते जदों तन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए ते उस तन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन सात सगत बोलो श्री हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तां मेरे घर वालिया ने भी आख्या हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं क्योंकि तू छूत दी बीमारी है जे तेरे नाल कोई होर लगेगा वो भी कोड़ी हो जाएगा इस वास्ते मैनू आ घरों पिंड विचों कढ के इत्थे चुगी पा के बिठा गए कितने कितने दिन बीत जांदे हन मैनू मनुख दी शकल नहीं दिसदी कोई तरस करके रोटी रख जावे तां मैं खा लैंदा नहीं तां भुखे ही समा बीत जांदा है लेकिन हे रब दे प्यारियो तुसी आज इस स्थान पे जिसनू संसार विच सारिया ने दुरकार दिता सारिया ने निकाल दिता तुसी मेरे कोल रात ठहरन वास्ते आए हो मैं आप दी किवें सेवा करां मेरे हाथ नहीं मेरे पैर कोई नहीं आ वेखो कोड़ लग्या होया हथां पैरां नूं जे इन्हां हथां दे नाल मैं साध संगत दी सेवा कर लैंदा तां खबरे आ दुख मैनू ना लगदा जे इन्हां पैरां दे नाल मैं माड़े पासे तुर के ना जांदा सत्संग वल जांदा तां अज मैं कोड़ी ना होंदा लेकिन आए हो तां हुण मेरे ते कृपा करो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों उस दा कोड़ी दा आ विरलाप सुनिया दुख सुनिया कोड़ दे विचकार बिलख रहा है तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे तनाश्री राग दे विच शब्द उचारिया ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ

सब सोए। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेबा दिती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद, सभा कालग सभा कालख दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं जाए। आख्या जो संसार ते आके नाम नहीं जप के जांदा, उस परमेश्वर दी भगती करके नहीं जांदा, ओ ता अपने मथे ते दोषां दे दाग ला के जांदा है, और ऐसे दाग दोष लगे हुए मथे वाले नूं पापी नूं फिर नरक भी नहीं चलदे। सत सिगत बोलो श्री। जेता मोह प्रीत स्वाद, सभा कालख दागां दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं जाए। कर्म मिले आखण तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों ये शब्द उत्थे उचारिया, जिवें जिवें साहब जी बाणी पढ़ते हैं, कौड़ी दे तन का दुख घटता जा रहा है। चरण पकड़ के कहन लगा, गरीब निवाज हुण आए हो तो मैनू इस दुख तो निवृत्त कर दिओ। ऐसे करुणा दे विच जदों अरदास कीती, मन करके गुरु नानक पातशाह दे चरणा विच, साहब जी कहन लगे, मर्दानिया जल लैके आ भाई। ते मर्दाना जल लियाया, साहब जी ने जल दे छटे कौड़ी दे शरीर ते मार के आख्या, जप भाई श्री वाहिगुरु, जप सतनाम श्री वाहिगुरु। जिवें जिवें कौड़ी वाहिगुरु जपद, वाहिगुरु जपद, उवें उवें तन दा कोड़ निवृत्त हो रहा है। सत सगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बाणी सुन के कौड़ी दे तन दा कोड़ भी दूर हो गया, ते अज गुरु नानक दे दर्शन करके मन भी अरोग हो गया। तन मन करके जेड़ा रोगी सी, तन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन करके तन दा भी रोग चला गया, ते बाणी सुन के मन भी अरोग हो गया। सात सगत बोलो श्री। साहब जी कहन लगे, भाई होर मंग की मंगदे, गरीब निवाज बहुता धन पाया, लेकिन धन दे नाल कोई सुख ना मिलिया। धन पा के जे मन सुखी हो जांदा तां धन बहुत सी, मैल माड़ियां पा के जे मन सुखी हो जांदा तां बहुत महल हन, माड़ियां दित्तियां तुसी, लेकिन मन तां भी सुखी ना होया। तिया पुत्रां नूं पा के जे मन सुखी होंदा तां गरीब निवाज फिर जदों शरीर कौड़ी हो गया तां उन्हां ने भी कट दिता, उन्हां दा भी सुख ना मिलिया। सुख तां तेरे नाम विच है, सुख तां तेरी भगती विच है, सुख तां अमृत वेले उठ के जपण विच है। श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले, आप क्या करदे समझो, अमृत वेले उठ के गुरु नानक दे चरणां नाल जुड़दा है भाई, उसनों कदे किसे वस्त दी कमी नहीं रह सकती। ओ तन और मन करके सदा सुखी रवेगा जो जपेगा श्री वाहिगुरु। हुण कौड़ी गुरु नानक पातशाह दे चरण पकड़ के की अरदास कर रहा है।

सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोसे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमृतचा दीवान, सच्चा तेरा उपसचा प्रमाण, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चा है सबदान, सच्चा है सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह नानक सच तिहाइन सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार, सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार, सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे सिंध संसार, चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बेकार, एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार, जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार, कोई जी आखे

मैं तीर्थ रोग है दारू थी इस माह है कृपा करे जी अपनी गुर का शब्द कमा है नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी शेर की संतोखी जिन सच सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू शीशी अगला।

छड़ कहे करवार सर को पूरा पे हुए काट न कोई आखे पात्रवाना पीछे पाई है ता नानक तोलिया जापे वदी सब जग नानका सच्चा देखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से ही के पौड़ी तुल कर जिना को तुल पाया ताकि नी खसम ते आया है न जलता के उसके जनाई तुल वेक की जग तू आया एक रानो

पर पुस्तक संध्या बादल सिल पूजस बगल समादन मुख पूत देभूखण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गलमाला तुलाटं दोय धोती बस कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं साफो कुट निश्चो कर्मं कौ नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर बाट न पावे बोड़ी कपड़न सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंगा चंगा अपना आपे ही कीता भावना हुकम दिए मन भावे रात हीड़े अके जावना नंगा दो

तन फिटे फेर करेन मन लिखे चुरी करेन आपे ही कर्म कराएगा वडो वडावण मेतनी सिरे सिर तंते लाएगा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना का कराएगा कर्म।

आठर तीर जे नाव है उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी माय सचे नाम दरवाज पर खर्च मंगा जबे दे ता काहे दीवाने को कलमे का हमत हमें दर ले लिखा पीर छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों कर आप ही तय धारिये देखी तया अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई।

चलो भैडा दूजा एक नहीं आशकी दूजा लगे जाए नानक आश काटिए सगिरे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आशक ए ना किए जे लिखे वरते सोए नानक दोवें कुड़ियां खाए ना खाई पाए मोड़ी सिरा सुपाइए सो साहिब सदा संभालिए साकाल बुरी क्यों गालिए दिल में नजर निहालिए जो साहिब नाल हारिए।

अलग अलग हैं, पर जोत ओहा चुगत साई सह पाया फेर पलटे। पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु कोई होर।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा, ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। तेरो जन होए सो एकत डोले, तीन भवन पर छा जा, हाथ

गम ना होवे, दुख ना होवे, अंदोह ना होवे, चिंता ना होवे, माल कठा करके सामण दी फिकर ना होवे, किसदा देना ना होवे, ओ लोक बड़े सोहणे हुंदे। ध्यान देना, साहब कहंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे, जिन्हां नूं गुरु की संगत च बहना आ गया उन्हां नाल सोहणा होर कोई नहीं हो सकदा। कई बार ऐसा तुसां वेख्या अपने आले दुआले विच, छोटा जिहा बच्चा है, मां चुम चुम के कमली हो जांदी, कहिंदी मेरा लाल, मेरा सोहणा, मेरा चन्न। एक दिन ऐसा होंदा है मुंडा जवान हो जांदा, मुंडा होर भी सोहणा हो गया, सोहणा जवान उठिया, चमड़ी ओवें अगे नाल भी सोहणी चिट्टी है, नक्श भी निखर आए ने, वस्त्र भी सोहणे पाए ने। छोटे होंदे तां थोड़ा बहुत गंदा भी हो जांदा सी, हुण मैल भी नेड़े नहीं लगण दिंदा। लेकिन एक दिन हुंदा है मां कहिंदी है निज होणे आए दे नाल तां ना जमदो साडे घर। क्यों कहिंदी ऐसा? क्योंकि उस मुंडे की करतूत विगड़ गई, हुण ओह सोहणा नहीं लगदा, प्यार करन नू जी नहीं करदा, सुहपन पूरा है, बाहरों सुहपन पूरा है, मगर मां नू चंगा इस करके नहीं लगदा क्योंकि ओदे अंदर दा सुहपन गवाच गया। बचपन च अंदर भी सुहपन कायम सी, वड्डे हुंदियां खराबियां करके अंदरों कोझा हो गई। और ध्यान देना, बंदा वेखण नू किड्डा सोहणा ते किड्डे सोहणे वस्त्र पाए होण, जे ओदियां अखां च काम है ना, ते अणजाण बच्ची कहिंदी है मां इस बंदे दी अख ठीक नहीं, इह वेखदा होर तरह। जे किसे दी बंदे दियां अखां विच लोभ होवे ना, बंदा चीजा अगा पिछा रख लेंदा, कहिंदा कि इस बंदे दी अख दा भरोसा कोई नहीं, कुछ चुक न जा, क्योंकि लोभी अख वाला बंदा इहदी अख विच लालच टपकदा। ते तुहाडे आले दुआले जिन्ने बंदे हिक फला के छाती तान के हंकार नाल तुरदे ने, या किसी की फतेह का उत्तर नहीं देंदे, तुहानूं कोई चंगा लगा अजे तक? जिहड़ा बंदा फतेह बुलाउंदा ही ना होवे, फतेह का उत्तर ना देंदा होवे, हंकारिया होया, ओह बंदा तुहानूं कदे चंगा नहीं लग सकदा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार च ग्रसिया बंदा तां अपने आप नूं चंगा नहीं लगदा, किसे नूं की चंगा लगेगा, निरंकार नूं की चंगा लगेगा, गुरु नानक नूं कौन चंगा लगदा। साहिब कहिंदे ने, आपां सारी वार च रोज पढ़दे, भगत तेरे मन भावदे, मेरे वाहिगुरु जी तेरे भगत जिहड़े ने तेरे मन नूं भी चंगे लगदे ने। क्यों चंगे लगदे ने? दर सोहण कीरत गावदे, ओह तेरे दर ते बैठ के तेरा जस गाउंदे ने ते सोहणे हो जांदे। तूं बहुत सोहणा है, अत प्रीतम मन मोहना घट सोहना, तेरा दरबार भी बहुत सोहना है, ते जेड़े तेरे दरबार नाल जुड़ गए ओह किवें ना सोहणे होणगे। कहिंदे ने लोक, फिजियोलॉजिस्ट कहिंदे ने, मिट्टी का भी असर हुंदा। तुसीं देखना, कई बार तुसां देखिया होवेगा, कुछ जानवर ऐसे हुंदे ने जेड़े रुखां ते पक्के ही रहिंदे ने, जिहो जिहा रुख ते रहिंदे होण उहो जिहा उहदे खंभ हो जांदे ने, उहो जिहा रंग हो जांदा। कलर दे सप दा रंग होर है, घाह विच रहण वाले सप दा रंग हरा है, काली मिट्टी च रहण वाले नागां दे रंग सुरमई ते काले ने। क्यों? मिट्टी भी अपना रंग चढ़ाउंदी, घाह भी अपना रंग चढ़ाउंदा है। बर्फा दे इलाकियां च रहण वाले बंदे चिट्टे ने, इक्वेटर दे नेड़े रहण वाले लोक जिहड़े ने ओह काले काले, क्योंकि काली मिट्टी दे च रहिंदे। की कारण है? मिट्टी भी अपना रंग चढ़ाउंदी है, ते बंदा संगत च बह जाए संगत दा रंग ना चढ़ेगा, गुरु की हजूरी च बैठ जाए गुरु का रंग ना चढ़ेगा। जिसने गुरु नानक नाल जुड़ के बैठेगा गुरु नानक का रंग चढ़ेगा, गरीबी आवेगी, निम्रता आवेगी, हंकार मिट जाएगा। जिथे काम रहिंदा सी उथे राम रहेगा, जिथे क्रोध रहिंदा सी क्रोध निकल जाएगा, उथे बोध आ जाएगा, सोझी आ जाएगी। जिथे लभ वसदा सी लोभ वसदा सी उथे रब वसेगा, जिथे मोह वसदा सी उथे मोहन वसेगा, जिथे हंकार रहिंदा सी उथे निरंकार वसेगा, ते बंदा बदलना जाएगा, बंदा होर दा होर हो जाएगा। तुसां वेखिया कई महापुरुष जिहड़े भगती ते सिमरन वाले ने, शकलों कोई बहुते सोहणे ने, लेकिन आखीदा बाबा जी दे दर्शन करने। क्यों? की दर्शनां च की पिया है? काला रंग है, मुंह ते माता देवी दाग ने, मोटी सारी ऐनक लगी हुई है। बाबे दा वेखण वाला की है? उस बाबे दा जीवन वेखण वाला, ओदे दर्शन करके चित प्रसन्न हुंदा, क्योंकि ओ बंदा रविदास दी नगरी दे वसण वाला है, जिथे बेगमपुरा है, सुख महल जाके ऊंच द्वारे, बंदा बदल जांदा है। उस अवस्था च जाके मनुख बाहरों भावे कुछ नजर आवे, अंदरों इन्ना पवित्र ते स्वच्छ हो जांदा है, गुरु नानक नूं चंगा लगदा है, प्रभु नूं चंगा लगदा है, संसार नूं चंगा लगदा है, अपने आपे नूं चंगा लगदा है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह संगत सहित बैठे सन, कुछ प्यारियां प्यारियां विचारां दे नाल सिमरन अभ्यास दा समा सी, सारे जुड़ के नेत्र बंद करके चौंकड़े मार के बैठे, साहिब आप भी जुड़ के बैठे,
अचानक थोड़ी जी खलबली हो गई। बाहर शोर मचिया। साहिबा ने नेत्र खोले। क्यों भाई ये बाहर रौला कद है, शोर कद है? किसे प्रेमी ने क्या कहन लगा, महाराज आ बारो एक बंदा आया, वो कहंदा भी अपने इस स्थान ते कुछ और आवड़े। साहब मुस्कुरा पे कहन लगे, उन्होंने वेखिया है अके जी? हां खुरा आया है, बंदा आया है, दौड़ के अंदर लंघ आया है। ओदा खुरा दसदा है कि इस दरवाजे अंदर अंदर लंघे। साहब कहन लगे, जेडे चोर दे भालू ने उन्हें बुला लै अंदर, चोर दे लभण वालियां नूं खोजियां नूं बुला लो अंदर। वह बंदे जेड़ी वार लगी सी चोर दे मगरों आ गए। महाराज का सत्कार किया, कह लगे सतगुरु जी साडा चोर इत्थे अंदर आया, खुरा दसदा है। साहब कह लगे, भाई जे तुहाडा चोर इत्थे ते वेख लो, आ जाओ। आ जिहड़े बंदे बैठे ने, संगत सजी हुई एन जुड़ के बैठे ने सारे। साहब कह लगे, इन्हां दे विचों जिहड़ा तुहाडा चोर है भाई देख लो, वेखिया किसे ने? एक बंदा कहिंदा जी मैं महाराज जी झलक वेखी सी, बाकी तां खुरा ही लभदे आए। साहब कह लगे, जे वेखिया ते लभ लो। वह सारे देखण लग पए, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੁੰਤਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜੀ, ਉਹਦੇ ਲੂ ਲੂ ਚ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚੇਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਚੋਰ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ? ਕਿ ਜੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭੋ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੋਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਇਹ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਮੁੜਦਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆ, ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰੱਖ ਜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ, ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ। ਗਿਆ ਪੀਪਾ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੀਪਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਪਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹਦਾ ਪੀਪਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੀਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਸੱਜਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚ ਕਿਉਂ ਭਰ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਲਵੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਘਿਓ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਕ 15-16 ਸਿਰ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ 15-16 ਸਿਰ ਘਿਓ ਨੂੰ ਨੀ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਧ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ,
चोर किसी नूं चंगा नहीं लगता, डाकू किसी नूं चंगा नहीं लगता, मां पुत्र दी सांझ टुट जांदी है, प्यो नूं चंगा नहीं लगता, भरावां नूं चंगा नहीं लगता, होर किसे निरंकार नूं ते गुरु नानक नूं या अपने आप नूं कित्थे चंगा लगना है, संसार नूं कित्थे चंगा लगना है, अपनियां नूं चंगा नहीं लगता। माड़ियां वहिवतां वाला बंदा किसी नूं चंगा नहीं लगता। और जिन्ना चिर मनुख दे अपने अंदर कमजोरियां होण, एक कवि ने गल कही, वह कहिंदा करो दोस्तों पहले आप अपनी इज्जत, अगर चाहते हो तुम इज्जत ज्यादा, तू चाहना संसार तेरा मान करे तो तू पहले अपना मान कर। पर खिमा करना, मैं सोहने सोहने कपड़े विखा के हो सकता तुहानू किसी हद तक चंगा लग जा, पर जे मेरे अंदर काम ते क्रोध के पैरे ने, मैं अपने आप नूं चंगा तो नहीं लग सकता, मैनू तो पता है मैं की हाँ, मेरी करतूत की। हां जिस दिन मैं अंदरों सुचा हो जावा, मैं अपनी निगाह विच आप ही उच्चा उठ जावा, आप ही शुद्ध हो जावा, उस दिन तुसी भी मान करोगे, संसार मान करेगा, उस दिन गुरु नानक भी मान देगा। जिस दिन मैं अपनी इज्जत दे आप योग हो जावांगा, उस दिन संसार किवें ना मान करेगा, प्रभु दे दर ते भी उच्चा हो जावांगा। जेड़ा गुरु दर नाल जुड़ गया है

0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है, सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है, जिथे भी साध जन बैठ के उनु चेते कर देने, उथे ही
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह का नाम जपेगा, जो एक बारा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बो तायो। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साढ़े भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ओ स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ताई आखिया

अजय सुरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन बिछड़ गया रोवे ते सुरलंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पए मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मतला।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सगुना सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बवेकार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे सो तू है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार।

अरमल खाई सिर छाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिनाए किछ थाए ना पाई रहे बेबाणी मणी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए।

छड़ कहे करबार सबको बुरा पे हुए काट न कोई आखे पात्रवाना पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे वदी सो जग नानका सच्चा देखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्तो है चंगे से ही के पौड़ी तुल कर जरा को तुर पाया ताकि अपनी खसम ते आया है न जलता के उसके चनाई खुद वे की जग तू पाया एक

अक्षर तीर जे नाव है उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते बले संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बात सचे नाम दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे ता काहे दीवाने को कलमे का हम तुम्हारे दर ले लिखा पीर छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना दियो करा पेही तय धारी है देख ही तया बना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके

एक रही चाकरी जित मौका सुना जाए। नानक सेल कांडी है जे सेती ही खसु समाए, बोड़ी नानक अंतरा जात बनी, हर ताके पारा वारे अपराय साथी।

गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। सो गुरु नानक देव जी का बोलिया होया सदा ही प्रवान होया, और मेहरवान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन जाता है, दास दी लाज

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन चित कीता उठे, सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे, साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा ले। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते, जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। बादशाह मैनू तुसी आग्या दे, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा, जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करने का फिक्र कितों पै गया, तू फना करन दी ताकत कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा, जे मेरे चरणा चो तबाह करन दी ताकत तेरे कोल आईयां ने, ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए, ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओहदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढ़े ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंह निकलदी।

बादशाह नूं फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जांदी। उन्हें तौज़ के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हाँ ये जो झूठ की दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हाँ कि ये दुकान बंद कर दिती जावे। जिस तो स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय की हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच की आवाज लोगों के कन्ना तक पहुंचे, वो सच की आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इसका इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप वो कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू किए। चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध की अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्होंने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नहीं रखन लग्या। हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ए शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनन दा संदेश सारे

सच्चा अमर गोविंद दा अमर मैंने हुक्म सुन गुरु प्यारे सतसंगत मेला पकारो अरे हर गुरु गोविंद त्याए कदों हर गुरु गोविंद त्याए सज अमृत वेला वाह वाह गो

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा। अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे, ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे, अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा है। गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है, चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में, कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्हें योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शी है। साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया, मैं वारने जावा सतगुरु तो, तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा, बलिहारने जावा उस तो। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते, जिन अवगुण कट गुणी समझाया। सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे। साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शिया है, अपना प्यार बख्शिया है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਹਿਬ।

0: जल रहे जल बिन कुंभ ना हो, ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है,
2: आसरा उसका आधार था, मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी ओवे जल लग रहे हैं, थोड़े को हजारे यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी छपड़ी ओदे कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी,
4: कागो हंस करे।
2: कागो हंस करे, कागो हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल की तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उथे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा, कबीर सेवा को दोहे भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज, सुबह नवाज गुलाल, जो सिर साई नानिवे सो सिर कपल उतार, जो सिर साई नानिवे सो सिर की देताए, उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे थाए।
5: और साहब जी की गल है पैदा, तुसी ने क्या दिता?
4: असी किस तरह जानते, सोचते हम पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता है, पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए पहले, मैं कोई कम कमाइया लई तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन नूं आई हां संगतां दी सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां?
5: मेरिया लोड़ा तो खुदावंद पूरिया करता है, तो होर मैं चाहिए देखिए, जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना, दिन वेले बेड़ी चलाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थड़े तो सौ जाना। मैं उगन हारा को गुन पले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है, और दर ते जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पास सागर तो पार उतारो।